0: मन्नू लेट्स गो।
1: चलो अब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
1: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
1: सॉरी
0: चौकी संभालो, जगह कैसी?
1: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
0: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
1: सोच लिया।
0: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
0: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो वो?
1: हाँ।
0: क्या?
1: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
0: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शीतल की बर्थडे पर यहां आकर इस पार्टी की रौनक बढ़ाई।
1: पार्टी में रौनक तो जरूर है, लेकिन कुछ फीकी सी है। कहो तो मैं
0: इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। किसी ने कहा है, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
1: वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। लेकिन अंकल, जीवन बिना मीत के और शायरी बिना संगीत के किस काम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेर में संगीत भर दूं।
0: जरूर जरूर, क्यों नहीं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।
0: ओके।